सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM
1: बिंदास
2: कुसुम
3: रेडियो ओलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर
4: क्या बात है सर क्या बात ये बात है
2: कुसुम

हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। जिया
1: बिंदास कूल सॉन्ग रेडियो ओलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड दी हैप्पीनेस,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

your happiness frequency. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है.

हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली आई मीन इट।

आप जी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड दी हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.

छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, बिकॉज हैप्पीनेस इज कंटेजियस. Radio Olive, your happiness frequency.

0: खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने।
1: जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे,
2: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
3: हाय एवरीवन, मैं हूं अरमान मलिक, 106.3 FM रेडियो ऑलिव, जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है. कूल सॉन्ग.

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटीजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो पॉलर, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: सलाम प्रणाम नमस्कार वणकम, मैं हूँ जैकी श्रॉफ। रेडियो 106.3 जियो बिंदास।
2: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: सलाम प्रणाम नमस्कार वणक्कम, मैं हूं जैकी श्रॉफ, रेडियो ऑलिव।

कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: हेलो नमस्कार, मम्मा मिया, मैं हूँ चंकी पांडे और आप सुन रहे हो मुझे।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटीजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास। यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM, जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: अपनों को पैसे भेजना हुआ और भी आसान, अलदार एक्सचेंज का वीजा डायरेक्ट सीधा आपके परिवार के बैंक अकाउंट में, कतर में पहली बार।

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास. से ए हालो धू विद रेडियो ऑलिव एंड ए टू जी इवेंट एंड ट्रेडिंग केटरिंग.
2: Doha Walo, get ready to glow, glam up and groove. We are bringing you the ultimate fashion fusion musical night. Throw on your brightest, most colorful festive ethnic wear, grab your favorite accessories and let's light up the dance floor.
1: Aur ultimate music ke liye saath hogi Bollywood ki sensational star Ishita Vishwakarma live.
2: Get ready for desi beats, chatpate street food and full on vibes this Friday, 9th October at Regency Hall,
1: 6 pm onwards.
2: Book your ticket on Snoonu City or for more info, call 3328-3393.
3: Powered by
1: wherever you are heading, book your ride with Badargo, Qatar's own ride hailing app. Badargo, your way to go. Download the app now.

दिल तेरा लेके ही तो लिख बेबी किसी से भी पूछ लौंडा टू मच बोली में थोड़ा रियान भी टच है जितने भी रूमर सुने तूने अपनी सहेलियों से मेरे बारे में वो सारे सच है बेबी मैं हूँ वो जिसके बारे में चेतावनी देती होगी तुझे तेरी

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।
1: अपने लव्ड वंस को पैसे भेजना हुआ और भी इजी। कतर में पहली बार हल्दार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट, जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में। फास्ट, इजी और रिलायबल। विजिट कीजिए हल्दार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए हल्दार एक्सचेंज ऐप नाउ।
2: हाय गाइस, दिस इज वाणी भानुशाली।
3: हे, दिस इज लियाना डिक्रूज।
4: दिस इज मी ऋतिक रोशन।
5: हाय, आई एम आलिया भट्ट।
6: हाय, मैं हूं विवेकानंद ओबेरॉय एंड यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव। जियो बिंदास।

गानों के साथ या हैप्पीनेस बट रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास। यू आर लिसनिंग टू कतार्स नंबर वन रेडियो स्टेशन, रेडियो ऑलिव 106.3 FM। जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड ज्वेलरी, सीरियसली माही?
2: यस बेबो,
1: सिर्फ 25% पे करके गोल्ड प्राइस लॉक कर सकती हूँ।
2: यस,
1: कैच क्या है?
2: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के साथ सेलिब्रेशंस को और भी खास बनाओ। डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेसेस पर पाओ फ्री कैश वाउचर्स और सिर्फ 25% पे करके गोल्ड रेट को ब्लॉक कर दो।
1: आई स्टिल कांट बिलीव इट, नो कैच।
2: कैचेस सिर्फ मैचेस में होते हैं बेबो। दिस इज योर फेस्टिव गिफ्ट फ्रॉम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड।

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM
1: बिंदास
2: कूल सॉन्ग
3: रेडियो ओलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर
4: क्या बात है सर क्या पर ये बात है
2: कूल सॉन्ग

आप जी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो पॉलिट, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव पे।

रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास। अपने लव्ड वंस को पैसे भेजना हुआ और भी इजी। कतर में पहली बार हलदार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट, जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में। फास्ट, इजी और रिलायबल। विजिट कीजिए हलदार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए हलदार एक्सचेंज ऐप नाउ।

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड ज्वेलरी? सीरियसली माही?
2: यस बेबो.
1: सिर्फ 25% पे करके गोल्ड प्राइस लॉक कर सकती हूँ?
2: यस.
1: कैच क्या है?
2: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के साथ सेलिब्रेशंस को और भी खास बनाओ. डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेसेस पर पाओ फ्री कैश वाउचर्स और सिर्फ 25% पे करके गोल्ड रेट को ब्लॉक कर दो.
1: आई स्टिल कांट बिलीव इट. नो कैच.
2: कैचेस सिर्फ मैचेस में होते हैं बेबो. दिस इज योर फेस्टिव गिफ्ट फ्रॉम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स.

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड ज्वेलरी? सीरियसली माही?
2: यस बेबो।
1: सिर्फ 25% पे करके गोल्ड प्राइस लॉक कर सकती हूँ?
2: यस।
1: कैच क्या है?
2: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के साथ सेलिब्रेशंस को और भी खास बनाओ। डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेसेस पर पाओ फ्री कैश वाउचर्स और सिर्फ 25% पे करके गोल्ड रेट को ब्लॉक कर दो।
1: आई स्टिल कांट बिलीव इट, नो कैच।
2: कैचेस सिर्फ मैचेस में होते हैं बेबो। दिस इज योर फेस्टिव गिफ्ट फ्रॉम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स।

गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास। अपनों को पैसे भेजना हुआ और भी आसान, अलदार एक्सचेंज का वीजा डायरेक्ट सीधा आपके परिवार के बैंक अकाउंट में, कतर में पहली बार।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: Hi everyone, this is Benny Deol here.
2: Benny Deol here.
1: Olive Radio 106.3. Jio Bindas.
2: Jio Bindas.
3: Olive Suno Radio.

रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।
1: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Nanatal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Alkhur.

सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटीजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: हाय देयर फ्रेंड्स, दिस इज डीजे सुकेतु। You're listening to Radio Olive 106.3 FM, Geo Bindas.
2: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian.

हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

वीकेंड आते ही ऐसा लगने लग जाता है जैसे किसी ने मेरी बॉडी में एक नहीं दो दो सोल्स जो है वो एंटर कर दिए और एनर्जी और बैटरी का लेवल जो है वो 100% से ज्यादा हो गया है। जी आपकी कूल सी छोरी आपकी कशिश जो है वो आ चुकी है अपने साथ द टेक शो लेकर आ गई है जहां पर टेक्नोलॉजी की बात होती है मस्ती के मजे के तड़के के साथ। और आज बहुत सारी तड़कती फड़कती खबरें जो है टेक्नोलॉजी की दुनिया से रिलेटेड जो है मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ। बस उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस वॉल्यूम बढ़ाकर 106.3 रेडियो ऑलिव में ट्यून इन रहना है। और बाकी आपका वीकेंड कैसा जा रहा है ये आप बता सकते हैं। थोड़ी सी देर में मैं भी निकलूंगी अपना जो है वीकेंड और हैपनिंग बनाने के लिए ओ हालो धूम जो है इवेंट में, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो है आप अमेजिंग वाला गाना जो आपके रेडियो सेट्स पर आ रहा है इसे एंजॉय कीजिए आपकी कशिश के साथ। मैं हूँ आपकी कशिश, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

पीछे बावरा समन, बावरा समन। हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास। अपने लव्ड वंस को

0: पैसे भेजना हुआ और भी इजी। कतर में पहली बार हल्दार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट, जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में, फास्ट, इजी और रिलायबल। विजिट कीजिए हल्दार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए हल्दार एक्सचेंज ऐप नाउ।
1: हाय गाइस, इज अबार शक्ति खुराना और आप मुझे सुन रहे हो रेडियो ओलंपिक।
2: E-C-H. The Dick Show.

देखिए मम्मी पापा कितना भी कह ले कि ये जो गेम वेम है ना इसमें कुछ नहीं रखा है, ये गेम खेल के तुम कहीं नहीं जाओगे, लेकिन कुछ लोगों ने गेमिंग को बहुत ज्यादा सीरियसली लिया है और उसमें करियर भी बनाया है। हाँ जी, और मैं उन लोगों में से बिल्कुल नहीं हूँ। आपकी कौन सी छोरी आपकी कसू जो है द टेक शो लेकर आ गई है, जहाँ पर टेक्नोलॉजी की बात होती है मस्ती के मजे के तड़के के साथ। अब देखिए यार, गेमिंग में कुछ लोगों ने अपना जो है एक नया टाइप का मुकाम जो है वो हासिल कर लिया, चाहे वो यूट्यूब पे स्ट्रीम करके हो या फिर गेमिंग में हो, ई गेमिंग जो टूर्नामेंट्स होते हैं उनमें हो। लेकिन एक अंडररेटेड गेम जो है वो है कैंडी क्रश। यस, वही गेम जो पापा लोग अक्सर खेलते रहते हैं या आपको आपके ऑफिस में वो जो एल्डरली लोग होते हैं ना वो खेलते हुए दिख जाते हैं। लेकिन कैंडी क्रश में कभी किसी ने इतना पोटेंशियल देखा ही नहीं कि यार ये कैंडी क्रश में भी कोई कुछ महारत हासिल कर सकता है। सो एक 19 इयर्स के टीनेजर जो है इंडिया से, उन्होंने कैंडी क्रश में जो है ऐसा मुकाम हासिल किया है कि उन्हें वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर जो है वो दे दिया गया। हाँ जी, कैंडी क्रश में 22,222nd लेवल जो है वो इन्होंने पार कर लिया है। एंड इसके बाद कैंडी क्रश ने भी कहा, देखो इतना तो हम बना नहीं पा रहे हैं जितने जो है आप सॉल्व करते जा रहे हैं। सो कंग्रेचुलेशंस इन्हें। और मुझे ऐसा लगता है मम्मी पापा लोग जो भी मुझे सुन रहे हैं और अपने बच्चों के हाथ से फोन आप छीनते रहते, कुछ गेम्स उन्हें खेलते रहने देना चाहिए, हो सकता है कि वो भी कुछ ऐसा कमाल कर दे। मैं हूँ आपकी कसू, मुलाकात होगी आपसे थोड़ी सी देर में। स्टे ट्यून और कहते रहिए जी ओपन दैट।

मैं इंस्टाग्राम खोलती हूँ और लोग व्हाट्सएप को जो है रोस्ट करना शुरू कर देते हैं। अब कह रहे हैं कि यार व्हाट्सएप जो है वो इतनी जल्दी अपडेट्स देता है कि उससे जल्दी तो मतलब मम्मी भी हमारी नहीं है। मतलब अगर मैं वॉशरूम जाता हूँ, बाहर आता हूँ, व्हाट्सएप का अपडेट आ जाता है। मैं खाना खाता हूँ, पानी पीता हूँ, उतने में व्हाट्सएप का अपडेट आ जाता है। मैं आंखें ब्लिंक करके वापस खोलता हूँ और उतने में व्हाट्सएप का नया अपडेट आ जाता है। हाँ जी, आपकी कौन सी छोरी आपकी कशिश जो है यहाँ पर आ चुकी है द टेक शो लेकर आपके लिए, जहाँ पर टेक्नोलॉजी की बात होती है मस्ती के मजे के तड़के के साथ। अब देखिए यार, व्हाट्सएप खोलते ही आजकल जो है एक नया आइकन लोगों को दिख रहा है म्यूज का, जहाँ पर एक क्यूट सा टेडी बियर जैसा दिखने वाला एक क्रिएचर जो है आपको दिखेगा। एंड काफी लोग जो है सोशल मीडिया पर इसका मजाक उड़ा रहे थे कि यार आखिर ये क्या शुरू कर दिया इंस्टाग्राम, ये क्या है, हमें तो नहीं पता ये क्या है। तो मैं बता देती हूँ, ये है म्यूज। सो जैसे आप व्हाट्सएप पर भी मेटा AI यूज करते थे, तो अब म्यूज जो है वो मेटा AI का टूल है। और जैसे हमने जो है पिछले एपिसोड में भी बात की थी द टेक शो में कि जो है अब अलग अलग AI एजेंट्स आ रहे हैं जो आपको पर्सनलाइज जो है आंसर्स दिया करेंगे, आपके लिए मॉनिटरिंग किया करेंगे। सो बस ये जो म्यूज है जो आपके व्हाट्सएप पे आपको दिख रहा है, ये उन्हीं में से एक है। सो दिन मतलब जो डेली के छोटे मोटे काम होते हैं, जो छोटे मोटे सवाल होते हैं जो आप जेमिनी से ChatGPT से पूछते हो, वो आप इस मेटा AI के म्यूज जो है उससे भी पूछ सकते हो। ये एक AI एजेंट होने वाला है। सो बाकी मुझे ऐसा लगता है कि आलसी बनाने का पूरा जो है प्रबंध हमें कर दिया गया है, सारे तरीकों से आया आलसी जो है अब हमें व्हाट्सएप बना के ही रहेगा। बाकी अमेजिंग वाले गाने जो आ रहे हैं आपकी रेडियो सेट्स पर, इसे एंजॉय कीजिए आपकी कशिश के साथ और कहते रहिए जियो बिंदास।

लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. रेडियो

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड ज्वेलरी? सीरियसली माही?
2: यस बेबो।
1: सिर्फ 25% पे करके गोल्ड प्राइस लॉक कर सकती हूँ?
2: यस।
1: कैच क्या है?
2: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के साथ सेलिब्रेशंस को और भी खास बनाओ। डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेसेस पर पाओ फ्री कैश वाउचर्स और सिर्फ 25% पे करके गोल्ड रेट को ब्लॉक कर दो।
1: आई स्टिल कांट बिलीव इट, नो कैच।
2: कैचेस सिर्फ मैचेस में होते हैं बेबो। दिस इज योर फेस्टिव गिफ्ट फ्रॉम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स।
3: अपने लव्ड वंस को पैसे भेजना हुआ और भी इजी। कतर में पहली बार हल्दार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट, जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में। फास्ट, इजी और रिलायबल। विजिट कीजिए हल्दार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए हल्दार एक्सचेंज ऐप नाउ।
4: JECH

देखो यार, अपने शो पे मैं मम्मी की इतनी बात कर लेती हूँ ना कि मेरे घर वालों को अब जेलिसी होने लगी। मेरे दादाजी उस दिन मुझसे कह रहे थे कि यार तुम सिर्फ अपनी मम्मी की बात क्यों करती हो, हमारी बात क्यों नहीं करती। मेरी दादी जी, मेरे पापा सब जो है काफी ऐसा फील कर रहे हैं कि यार मम्मी की ही बात इतनी क्यों करते हो। अब मैं क्या करूँ, आखिर लाइफ में हर चीज जो है वो मम्मी से जो है बहुत रिलेट कर जाती है, बहुत रिलेटेबल लगने लग जाती है। जी, आपकी कुल सी छोरी, आपकी कशिश जो है यहाँ पर आ चुकी है आपके लिए लेकर द टेक शो, जहाँ पर टेक्नोलॉजी की बात होती है मस्ती के, मजे के, तड़के के साथ। अब देखिए यार, एक लड़का है, एक बच्चा है बेसिकली, जो आइलैंड में जो है वहाँ पे पढ़ता है, एंड उसको अपनी मम्मी की काफ़ी याद आती थी। एंड जब वो वापस आया वहाँ से, तो उसने कुछ ऐसा फिक्सेशन करने का सोचा कि यार अब मैं अगली बार जब जाऊँ ना तो मम्मी को अपने साथ लेकर जाऊँ। अब पॉसिबल तो था नहीं उनका फिजिकली जाना, तो टेक्नोलॉजी के थ्रू 24/7 वीडियो कॉल की फैसिलिटी जो है इन भाई साहब ने अपनी मम्मी के लिए चालू कर दी। मतलब उन्होंने एक पुराना जो कंप्यूटर मॉनिटर होता है उसे फिक्स कर दिया है टेबल पे, ताकि जब भी मम्मी चाहे तो अपने बच्चे को देख सके, जब भी वो अपने रूम में हो, और जब भी बच्चा चाहे तो वो अपनी मम्मी को देख सके। अब इसमें क्या है कि अगर वाईफाई जो है डिस्कनेक्ट होगा तो उसने ऐसी कोडिंग करके रखी है कि अपने आप कनेक्ट हो जाएगा। आखिर अगर कंप्यूटर शटडाउन हो जाता है तो वो भी अपने आप ऑन हो जाएगा। टेक्नोलॉजी देखिए, मम्मियाँ जो है अक्सर कहती रहती हैं कि हमारा बच्चा जो है बिगाड़ रही है, लेकिन यहाँ पर टेक्नोलॉजी एक माँ को अपने बेटे से मिला रही है। अब बताइए यार, मतलब कहाँ पर हम ये कहते थे कि यार फोन्स की वजह से ना दूरियाँ आ गई है फैमिलीज में, अब बच्चे अपनी मम्मी से बात नहीं करते, उनके साथ बैठा नहीं करते। देखिए यार, बच्चों की प्रॉब्लम है ये, टेक्नोलॉजी की नहीं, सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। फिलहाल देखिए, आज का ज्ञान यहीं पे समाप्त करते हैं, आगे गानों के साथ बढ़ते हैं। थोड़ी सी देर में और टेक्नोलॉजी वाली अपडेट जो है मैं लेकर आ रही हूँ। स्टे ट्यून्ड और कहते रहिए आपकी कशिश के साथ जियो बिंदास।

0: ओके बाकी सब ठीक
1: बस चल रहा है
0: बाकी सब ठीक
1: बस चल रहा है
0: बाकी सब ठीक है ना
1: बस चल रहा है भाई
0: व्हाट अबाउट यू
1: हाँ चल रहा है
0: बाकी सब ठीक
1: बस चल रहा है
0: बाकी सब ठीक
1: बस चल रहा है
0: बाकी सब ठीक है ना
1: हाँ ठीक है
0: और तेरा
1: बस

0: कीटो डाइट चल रहा है,
1: बाकी सब ठीक
0: बस चल रहा है,
1: बाकी सब ठीक
0: बस चल रहा है।
1: तेरा भी बोलना
0: मेरा भी चल रहा है। व्हाट अबाउट यू?
1: हाय लिख के दूं क्या?

0: रहा है,
1: बाकी सब ठीक
0: बस चल रहा है,
1: बाकी सब ठीक
0: बस चल रहा है,
1: तेरा भी बोलना
0: मेरा भी चल रहा है, व्हाट अबाउट यू?
1: हाय
2: गाइस, यहाँ पर जो है साइंटिस्ट और जितने टेक वाले लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि कैसे डेटा जो है वो छोटी सी छोटी चिप में जो है वो स्टोर किया जा सके, और यहाँ जेंजीज हैं कि ये वापस सीडी और डीवीडी में जा चुके हैं। हाँ जी, मैं हूँ आपकी कूल सी छोरी, आपकी कशिश, एंड जेंजीज जो है अब जो है वो मेमोरी कार्ड और चिप्स से जो है आगे बढ़कर नहीं कहूंगी, वैसे पीछे जाकर जो है अब वापस सीडीज की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। यस, मतलब मैंने जो है सीडीज सिर्फ तब देखी है जब स्कूल में हमें क्राफ्ट करना होता था, एंड मेरी टीचर ने मुझे बोला था कि जाओ जो है घर से सीडीज लेकर आना एंड उससे हम एक वॉल हैंगिंग बनाएंगे। मैंने तब देखी थी सीडीज, मैंने आज तक सीडीज कभी यूज भी नहीं करी है, लेकिन मेरे जनरेशन के लोग जेंजीज जो है वो सीडीज को इतना सीरियसली ले रहे हैं कि अब उन्होंने सीडी प्लेयर्स जो है वो जो है थ्रिफ्ट स्टोर से खरीदना शुरू कर दिया है, एंड अब धीरे धीरे करके ये जो साइकिल है ये उल्टी चलने लग गई है। यानी अब जेंजीज जो है वो पुराना जो फैशन होता था, चाहे अब वो आईपॉड्स का फैशन हो, चाहे वो रेडियो का फैशन हो, चाहे वो सीडी का फैशन हो, सब कुछ वापस लेकर आ रहे हैं। तो देखो टेक्नोलॉजी

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है,
1: जितनी चाहो उतनी बटोर लो,
0: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड ज्वेलरी? सीरियसली माही?
3: यस बेबो,
2: सिर्फ 25% पे करके गोल्ड प्राइस लॉक कर सकती हूँ।
3: यस,
2: कैच क्या है?
3: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के साथ सेलिब्रेशंस को और भी खास बनाओ। डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेसेस पर पाओ फ्री कैश वाउचर्स और सिर्फ 25% पे करके गोल्ड रेट को ब्लॉक कर दो।
2: आई स्टिल कांट बिलीव इट, नो कैच।
3: कैचेस सिर्फ मैचेस में होते हैं बेबो। दिस इज योर फेस्टिव गिफ्ट फ्रॉम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स।
4: Buying new glasses? Get up to 100% payback offer at Alfala Optics. Find this and more offers on Savify. Visit savify.co today.
5: Hi guys, this is Jorita Gandhi. Radio Olive, I'm the number one. You are listening to me on Radio Olive, Gio Bindas. Radio
6: Olive, I'm the number one. Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.
7: G-E-C-A.

ओके सो अब इंस्टाग्राम भी समझ गया है कि आपको शो ऑफ करने का कितना ज्यादा शौक है, एंड गाड़ी बंगला या फिर कुछ और जो है खाना पीना जो है, जब तक आप फ्लेक्स कर रहे थे तब तक तो मुझे भी समझ आ रहा था, लेकिन अब अपना पार्टनर जो है वो अगर उसे आपको सॉफ्ट लॉन्च करना है लेकिन उसका फेस नहीं दिखाना है तो भी इंस्टाग्राम आपकी पूरी मदद करने वाला है। हाँ जी, मैं हूँ आपकी कूल स्वीट छोरी, आपकी कशिश, एंड आपके लिए द टेक शो लेकर आ गई हूँ जहाँ टेक्नोलॉजी की बात होती है मस्ती के मजे के तड़के के साथ। अब देखो यार, सुदेव का शो मैं उस दिन सुन रही थी एंड वहां पर वो मुझे ये बता रहे थे कि यार पता है अब जो है इंस्टाग्राम पर एक ऐसा इफेक्ट जो है वो अवेलेबल है, अगर आपको किसी का फेस जो है वो हल्का सा ब्लर करना है सिर्फ उसको सॉफ्ट लॉन्च करने के लिए, मतलब ताकि ऐसा ना हो कि मतलब आपको किसी को लॉन्च करना है, किसी का जो है किसी को दिखाना है आपके साथ लेकिन उसका उसका चेहरा जो है ऐसे क्लियर नहीं दिखाना है लोगों को, कि उन्हें जो है ऐसी क्यूरियोसिटी होती रहेगी यार ये कौन है, इसके साथ ये क्या है, किससे एंगेजमेंट हुई है इसकी, ऐसा हो तो उसके लिए एक इफेक्ट जो है वो अवेलेबल है अब इंस्टाग्राम पे। बताओ यार इंस्टाग्राम कितना ज़्यादा सोच रहा है ना, पर लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि यार क्या ज़रूरत है, क्यों डालना है फोटो अगर दिखाना ही नहीं है लोगों को तो। खैर बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें। बाकी अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपकी रेडियो सेट्स पर, सो एंजॉय कीजिए, वॉल्यूम बढ़ाकर आपकी कशिश के साथ, और कहते रहिए जी बिंदास।

आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑनर, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है. जबरदस्त है.

भाई AI इतनी खूबसूरत चीज है ना, आज पता नहीं क्यों मैं टेक्नोलॉजी और उसके इमोशनल बेनिफिट्स की जो है बात ज्यादा कर रही हूँ। सो भुवन बाम को हम सब जानते हैं, बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं एंड बहुत अच्छी एक्टिंग जो है अभी कर भी रहे हैं, OTT पे काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं एंड उनके पेरेंट्स की जो है की डेथ हो गई थी कोविड के दौरान, कोविड टाइम के दौरान, एंड उसके बाद जो है वो काफी सैड चल रहे थे एंड अभी उनकी लाइफ में काफी सारे अच्छे अच्छे चेंजेस आए। सो उनके फैंस ने उनके लिए जो है AI से इस तरीके से उनकी फोटो डिजाइन करी कि उनके पेरेंट्स जो है उनकी हर इवेंट पे उनके साथ दिखाई दे रहे हैं एंड दिस इज सो ब्यूटीफुल ब्रो। मतलब आप जिसके साथ सपोज अगर मैं कतर घूम रही हूँ एंड मैं चाहती हूँ कि इस जगह पर मेरे पेरेंट्स होते मेरे साथ, तो उनकी फोटो मैं ऐड कर सकती हूँ। हाँ, AI बहुत ज्यादा गलत चीजों के लिए भी यूज हो रहा है, लोग इसे काफी फन के लिए यूज करते हैं, प्रैंक के लिए यूज करते हैं, लेकिन इसकी अच्छी साइड देखी जाए तो भी मजा बहुत आएगा, है ना। फिलहाल इसी बात के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक अमेजिंग वाला गाना मैं सुनाना चाहती हूँ एंड इस गाने के साथ मैं आपको ये याद दिलाना चाहती हूँ कि अब से कुछ ही देर में हमारा जो इवेंट है ए हालो धूम वो शुरू होने वाला है। सो अगर आपने अभी तक टिकट्स नहीं लिया तो आप ले सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, शायद आपको टिकट मिल जाए। बाकी हमारी सारी अपडेट्स के लिए जो है कि वहां पे हमने क्या क्या फन किया, रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम हैंडल को जाकर जल्दी से फॉलो कर लीजिए। मैं हूं आपकी कशिश, मुलाकात होगी आपसे थोड़ी सी देर में। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

चलो जी, आपको टाटा बाय बाय करके यहाँ से जाने का वक्त आ गया है। वैसे तो मेरे जाने का मन नहीं करता, लेकिन अभी जाऊंगी तभी तो कल लौट के वापस आ पाऊंगी। हाँ जी, आपकी कूल सी छोरी हूँ मैं कशिश, और आप मेरे साथ द टेक शो एंजॉय कर रहे थे अभी तक, लेकिन अब मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। अब क्या है ना गाइज, देखो मुझे जो है अच्छे से तैयार भी तो होना है, क्योंकि डांडिया करना है, गुजराती फोक डांस करना है, बहुत सारा यू नो फन होने वाला है, चटपटा स्ट्रीट फूड होने वाला है। सो मैं तो जा रही हूँ ए हेलो धूम में। आपको भी अगर मुझे ज्वाइन करना है तो आप रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम हैंडल पर जाकर सारी डिटेल्स जो है वो ले सकते हैं, और अगर आपको टिकट ना मिल पाए तो हमारी सारी अपडेट्स के लिए आप जो है स्टे ट्यून रहिए 106.3 रेडियो ऑलिव पर एंड हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर। चलो मैं चलती हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखो, हैप्पी वीकेंड, खाना खाते रहना, पानी पीते रहना, एंड गाड़ी भी धीरे धीरे हौले हौले चलाना। स्टे केयर, टाटा बाय बाय, जियो बिंदास।

गुड इवनिंग, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल एट 106.3 FM. मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है हैप्पी वीकेंड्स. भाई आज सुबह फ्राइडे की मॉर्निंग थी, मतलब ऑफिशियली स्लो मॉर्निंग्स, लॉन्ग ब्रेकफास्ट और थोड़ा सा आज क्या करें वाला मूड था. लेकिन आज सुबह एक इंटरेस्टिंग कतर स्टोरी के साथ शुरू हुआ, जब मैंने पढ़ा कि कतर ने 2026 के पहले 9 महीने में 2.614 मिलियन विजिटर्स वेलकम किए हैं. सेप्टेम्बर में ही अराउंड 276,000 विजिटर्स जो है वो कतर है. अब नंबर सुन के हम बोल सकते हैं कि वाह सो मेनी टूरिस्ट, लेकिन मुझे एक और क्वेश्चन इंटरेस्टिंग लगता है, आखिर लोग कतर में देखने क्या आते हैं, कितना कुछ है यहाँ पर देखने के लिए, और जब कतर आते हैं तो क्या उनके पास पूरा प्लान होता है. सो एक टूरिस्ट के लिए ना दोहा स्काईलाइन एक एक्सपीरियंस है, सोख वाकिफ की गलियों में वॉक करना एक एक्सपीरियंस है, कॉर्निश की इवनिंग व म्यूजियम, फूड, आर्किटेक्चर, सब कुछ एक एक्सपीरियंस है. और हम जो यहाँ रहते हैं ना, कभी कभी वही चीजें नॉर्मल लगने लग जाती है हमें, जैसे कोई टूरिस्ट दोहा की स्काईलाइन की फोटो ले रहा हो और हम साइड में बोल रहे हैं कि हाँ हाँ जरूर, हम तो ये रोज देखते हैं. सो आई वॉज थिंकिंग कि जब हम किसी चीज़ के साथ रहने लगते हैं या रोज हम उसके साथ आसपास रहते हैं तो हमारे लिए ना वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाती है. बट आज ये न्यूज़ पढ़ने के बाद मुझे लगा कि नहीं भाई, रोज कुछ ना कुछ यहाँ पे फोटो लेनी चाहिए. सो अगर आपका कोई दोस्त फर्स्ट टाइम कतर आ रहा हो और आपको सिर्फ एक जगह उसको दिखानी हो तो वेयर वुड यू टेक देम? बिकॉज समथिंग मुझे लगता है समटाइम्स ना द बेस्ट वे टू मतलब रीडिस्कवर अ प्लेस इज कि भाई आप उसको अपनी आंखों से दिखाओ कि हमने यहाँ पे क्या क्या प्लान किया था, कैसे पार्टीज की हैं. सो यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ऑफ, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है हैप्पी वीकेंड्स. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
0: अपने लव्ड वंस को पैसे भेजना हुआ और भी इजी। कतर में पहली बार हल्दार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट, जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में। फास्ट, इजी और रिलायबल। विजिट कीजिए हल्दार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए हल्दार एक्सचेंज ऐप नाउ।

एवरी डे मैं जब आपसे बात कर रही होती हूँ तो मैं आपसे बोलती हूँ कि चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, और आज तो वीकेंड है तो एक्सपेरिमेंट करना बनता भी है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और ये है हैप्पी वीकेंड्स। बचपन में ना समर वेकेशन काफी लंबी होती थी, है ना। मई स्टार्ट हुआ तो लगता था कि सितंबर तक स्कूल कभी नहीं खुलेंगे, ठीक है, मई जून जुलाई ऐसे करके दो तीन महीने तो छुट्टी होती ही थी। फिर आज जनवरी आता है, ब्लिंक, अक्टूबर, फिर दिसंबर, मतलब हम बोलते हैं कि एक्सक्यूज मी 2026 इतनी जल्दी कैसे खत्म हो रहा है। एक्चुअली साइंटिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट हैव एक्सप्लोर्ड व्हाई टाइम कैन फील फास्टर एज वी गेट ओल्डर। सो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया है कि नया एक्सपीरियंस क्रिएट करने में ज्यादा यू नो मेमोरीज लगती हैं। बचपन में हर चीज नई होती थी, फर्स्ट टाइम स्कूल, फर्स्ट ट्रिप, फर्स्ट बाइसिकल, नए क्लासरूम, समर हॉलीडेज, और अडल्ट में रूटीन ज्यादा होता है, जैसे कि सेम रोड, सेम ऑफिस, सेम कॉफी, सेम संडे, सेम मंडे। सो हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो मेमोरीज के बीच के जो मार्कर्स हैं वो कम होते हैं, इसीलिए पीरियड्स जो हैं वो छोटे हो सकते हैं। तो शायद टाइम फास्टर नहीं हुआ है, हमारी लाइफ में नए मोमेंट्स थोड़े से कम हो गए हैं। इस फ्राइडे को नई चीज़ ट्राई कीजिए, कोई नया कैफे, कोई नया रूट, कोई नई किताब, किसी स्ट्रेंजर से इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन, क्योंकि मे बी मेमोरीज बनाने का एक सिंपल फॉर्मूला है कि रूटीन को कभी कभी सरप्राइज कर लो। फॉर नाउ आई हैव टू से कि मुझे जाना होगा थोड़ी देर के लिए, इस गाने को एंजॉय कीजिए, सुन रही रेडियो ऑल ऑफ स्टे ट्यून, ये है हैप्पी वीकेंड।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटीजियस। रेडियो पॉलिट, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड ज्वेलरी, सीरियसली माही?
2: यस बेबो,
1: सिर्फ 25% पे करके गोल्ड प्राइस लॉक कर सकती हूँ।
2: यस yes.
1: कैच क्या है?
2: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के साथ सेलिब्रेशंस को और भी खास बनाओ। डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेसेस पर पाओ फ्री कैश वाउचर्स और सिर्फ 25% पे करके गोल्ड रेट को ब्लॉक कर दो।
1: आई स्टिल कांट बिलीव इट, नो कैच।
2: कैचेस सिर्फ मैचेस में होते हैं बेबो। दिस इज योर फेस्टिव गिफ्ट फ्रॉम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स।
3: Buying new glasses? Get up to 100% payback offer at Alfala Optics. Find this and more offers on Savify. Visit savify.co today.

0: फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर।
1: ये गाना
2: पूरे देश को पगला दूंगा, अभी तो कुछ पेश किया है, सुनो। नाम या दाम, नाम
3: मनी फॉलोज माय ब्रदर।

0: दूंगा पूरे देश को।
1: इमेजिन कीजिए, आपने किसी को लेटर लिखा, एनवेलप बंद किया, स्टैंप लगाया, पोस्ट कर दिया, और अब वेट, नो व्हाट्सएप, नो इंस्टाग्राम, नो लास्ट सीन, नो ऑनलाइन टू मिनट्स अगो। यू आर लिस्निंग रेडियो ऑल ओवर 6.3 FM, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है हैप्पी बिगिन। सो आज वर्ल्ड पोस्ट डे है एंड ऑनेस्टली मुझे लेटर्स की एक चीज बहुत ही खूबसूरत लगती है। लेटर्स लिखने से पहले आपको सोचना पड़ता था, सो आज हम मैसेज टाइप करते हैं, सेंड करते हैं, फिर सोचते हैं कि ओह ये थोड़ा ज़्यादा नहीं हो गया, और एडिट भी कर देते हैं, डिलीट भी कर देते हैं फॉर एवरीवन। बट लेटर में आपके वर्ड्स पेपर पर रह जाते थे, और शायद इसी वजह से ओल्ड लेटर्स इतने इमोशनल होते थे। कभी किसी ओल्ड बॉक्स में लेटर्स मिले हैं आपको, आप एनवलप खोलते हो और सडनली आप 10 साल पहले के वर्जन में यू नो चले जाते हो। सो आई हैव अ क्वेश्चन कि अगर आपको आज एक हैंड रिटन लेटर लिखना हो तो सिर्फ एक पर्सन के लिए, तो वो कौन होगा? मे बी यू डोंट इवन नीड टू सेंड इट। कभी कभी कुछ बातें लिखना भी इनफ होता है यार। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ऑफ, मैं हूं मुस्कान, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
2: Testing 1, 2, yeah. Ladies and gentlemen, when they look at you with their eyes and with a glare, they seem to control and override the very heart behind the matter. Just you want, don't even stay for a second. In space, that awareness of power to make you actually change. Avaaz Niche!

0: आप जी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड दी हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: Buying new glasses? Get up to 100% payback offer at Alfala Optics. Find this and more offers on Savify. Visit savify.co today.

So, मुझे एक अजीब सा मैजिक लगता है स्मेल में. कभी आपने कोई परफ्यूम स्मेल किया है और सडनली आपको लगा कि यार ये तो आपको स्कूल की याद दिला रहा है, या किसी दोस्त की, या किसी एयरपोर्ट की, या किसी यू नो ड्रेसिंग टेबल की. मे बी यू नो ये वो पर्टिकुलर शैम्पू जो बचपन में यूज होता था. साइंस भी कहती है कि स्मेल का कनेक्शन ना ब्रेन के उस एरिया से काफी स्ट्रांग होता है जो मेमोरी और इमोशंस से लिंक्ड है. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ऑफ 106.3 FM. मैं हूं मुस्कान और ये है हैप्पी वीक. आई नो आज बहुत ही रिलैक्स्ड मूड है आपका घूमने फिरने वाला, पर मुझे याद आया पुरानी किताबों के बारे में. वो मिट्टी की खुशबू, फ्रेशली कुक्ड पराठे और जो हमारी बचपन में संडे मॉर्निंग हुआ करती थी, अब वो फीलिंग वैसे फ्राइडे को आती है. ये किसी पर्टिकुलर परफ्यूम से कोई पर्टिकुलर पर्सन की याद आती है और मुझे लगता है कि मेमोरीज का ये वर्जन सबसे ज़्यादा ब्यूटिफुल है. फोटोज खत्म हो सकती हैं, वीडियोज डिलीट हो सकते हैं, लेकिन एक स्मेल आई और पूरा सीन वापस. सो हैप्पी वीकेंड्स. आप सुन रहे हैं कौन सी स्मेल जो आपको सीधे बचपन में टेलीपोर्ट कर देती है. कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए और देखते हैं कि कतर में सबसे पावरफुल मेमोरी स्मेल क्या है. सो नंबर इज 3311063. यू कैन व्हाट्सएप मी, आप मुझे वॉइस नोट भी भेज सकते हो. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

is all about Qatar. और कतर की बात करें तो हम यूजुअली बिग थिंग्स बात करते हैं, यू नो, स्काई लाइन, सूक वाकिफ, म्यूजियम, लग्जरी मॉल्स, बट टुडे लेट्स टॉक अबाउट द स्मॉल थिंग्स, वो छोटी सी चीज जो शायद टूरिस्ट नोटिस भी नहीं करते. आप करते हो और मैं भी करती हूँ. मे बी आपको अच्छा लगता है कि रात को भी चाय मिल जाती है, मतलब आप कितने भी बजे बाहर निकल जाओ आपको कहीं ना कहीं कड़क चाय तो मिल ही जाएगी. मे बी आपको पसंद है कि दोहा में आप एक ही दिन में इतनी डिफरेंट लैंग्वेजेस सुन सकते हो. मे बी किसी कैफे का स्टाफ आपको नाम से जानता हो. मे बी आपको लेट नाइट ड्राइव्स पसंद है. और फिर वो सिंपल सी फीलिंग, यहाँ दुनिया के इतने सारे कंट्रीज के एक ही सिटी में लोग मिल जाते हैं. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है हैप्पी वीकेंड्स. सो ये तो कतर की इंटरेस्टिंग आइडेंटिटी है, ठीक है. सो लेट्स मेक दिस कतर एप्रिसिएशन गेम, ठीक है. आपको कतर में वो कौन सी छोटी सी चीज अच्छी लगती है जो शायद बाकी लोग नोटिस भी नहीं करते? बिग लैंडमार्क्स नहीं, बिल्कुल भी स्मॉल थिंग, यू नो, जो यू नो हमने कभी चलते फिरते नोटिस की हो, सालों बाद आपको कभी दिखाई दी हो. आपको कतर में 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 2 साल हो गए और अब आपको लगता है कि यार ये छोटी सी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज समटाइम्स अ सिटी बिकम्स होम थ्रू अ लिटिल थिंग्स. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव. मैं हूं मुस्कान और ये है हैप्पी वीकेंड्स.

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड ज्वेलरी? सीरियसली माही?
2: यस बेबो।
1: सिर्फ 25% पे करके गोल्ड प्राइस लॉक कर सकती हूँ?
2: यस।
1: कैच क्या है?
2: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के साथ सेलिब्रेशंस को और भी खास बनाओ। डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेसेस पर पाओ फ्री कैश वाउचर्स और सिर्फ 25% पे करके गोल्ड रेट को ब्लॉक कर दो।
1: आई स्टिल कांट बिलीव इट, नो कैच।
2: कैचेस सिर्फ मैचेस में होते हैं बेबो। दिस इज योर फेस्टिव गिफ्ट फ्रॉम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स।
3: टफ काम और भी आसान, कार्नल ग्रुप लाया है शैंटोई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्नल ग्रुप नाउ।
4: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।
5: अभी बजा आएगा ना भिड़ो।

शाम का टाइम और एक कड़क चाय और आप चला रहे हो अगर गाड़ी तो यहाँ पर आपको बता दूं कि एक किताब की भी बात कर लेते हैं। यू आर लिस्टिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और ये है हैप्पी वीकेंड्स। कुछ बुक्स ना हम चूज नहीं करते, बुक्स हमें चूज करती हैं। यस, कभी आपने कोई किताब सिर्फ कवर देखकर खरीदी है? बी ऑनेस्ट, जरूर खरीदी होगी। मतलब मैं तो हमेशा ऐसी होती हूँ कि जब किसी लाइब्रेरी में जाती हूँ तो बोलती हूँ वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल कवर, आई विल डेफिनेटली रीड दिस। फिर बुक शेल्फ पर एक हफ्ता, एक महीना, छह महीने और बुक आपको देख रही होती है कि मैडम कब पढ़ने हैं मुझे आप। सो बेसिकली ऐसी बहुत सारी किताबें हैं मेरे पास जो मैंने अभी तक पढ़ी भी नहीं, बट समटाइम्स एक बुक जो है वो अनएक्सपेक्टेडली राइट मोमेंट पर मिल जाती है और आप बस एक नॉर्मल स्टोरी पढ़ रहे होते हो और सडनली एक पैराग्राफ आता है जो आपको करंट लाइफ सिचुएशन से परफेक्टली मैच करता हुआ लगता है और आप बुक बंद कर देते हो क्योंकि यू नीड अ मिनट। दैट्स व्हाट मेक्स रीडिंग स्पेशल। समटाइम्स यू डोंट रिमेंबर द एंटायर प्लॉट, ठीक है, वी रिमेंबर वन सेंटेंस दैट फाउंड अस एट द राइट टाइम। तो आज का क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है कि आपकी लाइफ में कौन सी ऐसी किताब जो रॉन्ग टाइम पर मिली बट सम हाउ राइट बुक बन गई, एंड अगर आपको कोई ऐसी किताब याद आ रही है देन शेयर विद। नंबर इज सेम 3311063 और हो सकता है कि आपकी रिकमेंडेशन किसी और के फ्राइडे को बेटर बना दे। सो नंबर तो बता दिया मैंने आपको 3311063। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बट रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।
1: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danadal Pahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif, Alkhol.

सो बर्ड्स के पास ना गूगल मैप्स नहीं होते। एक बर्ड को इमेजिन करो जो हजारों किलोमीटर की जर्नी करती है, कोई गूगल मैप नहीं, कोई एयरपोर्ट नहीं, कोई बोर्डिंग पास नहीं, कोई जीपीएस वॉइस भी नहीं, इन 500 मीटर्स टेक अ लेफ्ट, ऐसा कुछ नहीं सुनाई देता उन्हें। एंड येट एवरी ईयर माइग्रेटरी जो बर्ड्स होते हैं वो इनक्रेडिबली लॉन्ग जर्नी कंप्लीट करते हैं। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है हैप्पी वीकेंड। सो कल ना वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स डे का सेकेंड पीक डे है और इस ईयर कैंपेन जो है वो ऑब्जर्वेशन और बर्ड माइग्रेशन को अंडरस्टैंड करने पर फोकस कर रहा है। इवन साइंटिस्ट जो है अपनी स्टडी में बोलते हैं हाउ बर्ड यूज डिफरेंट एनवायरमेंट, बिकॉज अर्थ, मैग्नेटिक फील्ड, स्टार्स, लैंडस्केप और बहुत सारे सिग्नल्स और नेविगेट करते हैं। और मुझे सबसे सुंदर चीज पता है क्या लगती है, हम ट्रैवल से पहले गूगल करते हैं, बर्ड्स ट्रैवल करते हैं क्योंकि समथिंग इनसाइड देम नोज द वे, राइट। इमेजिन अगर आपको एक बर्ड की तरह एक फ्लाइट मिल जाए, कोई वीजा नहीं, कोई लगेज नहीं, कोई ट्रैफिक नहीं, दुनिया की किसी भी जगह फ्लाई करके जाना हो तो आप कहाँ जाओगे? कोई बोलेगा पेरिस, कोई बोलेगा जापान, कोई बोलेगा न्यूयॉर्क और कोई बोलेगा इंडिया जाना है यार, घर जाना है बस। सो यू टेल मी कि आप मुझे बताइए कि अगर आपको ऐसा मिलता है तो आप कहाँ जाओगे? यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ऑफ दिस इज हैप्पी वीकेंड, मुस्कान है आपके साथ, नंबर सेम 3311 1063, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.

भाई ये जो सुपर हिट गाना आप सुन रहे थे, ये हो सकता है कि आपका फेवरेट गाना हो. सो फेवरेट सॉन्ग नहीं, लेट्स टॉक अबाउट आर सॉन्ग. फेवरेट सॉन्ग सबका होता है, बट आर सॉन्ग वो अलग कैटेगरी है. और आप बेस्ट फ्रेंड का एक सॉन्ग, आप और पार्टनर का एक सॉन्ग, कॉलेज गैंग का एक सॉन्ग, फैमिली में शादी का एक सॉन्ग. और फनी पार्ट पता है क्या है कि कभी कभी सॉन्ग एक्चुअली इतने ग्रेट भी नहीं होते, और बस हम उसके साथ एक मोमेंट अटैच्ड कर लेते हैं, और फिर वो जो गाना है वो 3 सेकंड बजता है और आपका ब्रेन बोलता है कि ओह गोवा ट्रिप, या फिर कॉलेज फेयरवेल, या फिर कोई पर्सन याद आ जाता है आपको. सो म्यूजिक जो है वो इनक्रेडिबली पावरफुल है, और मुझे ऐसा लगता है कि ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरीज, बिकॉज आर जो ब्रेन है वो कॉन्सेप्ट द साउंड विद द इमोशंस एंड एक्सपीरियंस अराउंड इट. सो आज फेवरेट गाना मत बताना, आई वॉन्ट समथिंग मोर पर्सनल. कौन सा गाना किसी पर्टिकुलर पर्सन या ग्रुप के नाम हो चुका है आपकी लाइफ में? क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो ड्राइव स्टार्ट करते ही सेम गाना प्ले करते हैं कुछ पर्टिकुलर लोगों के साथ. सो गाना सुनते ही वो पर्सन या वो टाइम याद आ जाता है आपको, तो दैट्स आर सॉन्ग आप बोल सकते हो उसे. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ऑफ, मैं हूं मुस्कान विद दिस ब्यूटीफुल ट्रैक. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

ओके आप थोड़ा रोमांस हो जाए, अब आप कहोगे कि रेडियो पर, यस रेडियो पर अच्छे गाने सुनाना भी तो एक रोमांटिक जेस्चर है ना। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 एफएम, मैं हूं मुस्कान और ये है हैप्पी वीकेंड। बट प्रेडिक्टेबल वाला नहीं। इमेजिन करो आप एक अपार्टमेंट में मूव होते हो, एवरीथिंग इज नॉर्मल अंटिल वन डे यू मीट समवन, यू टॉक, यू कनेक्ट, यू स्टार्ट लाइकिंग देम। प्रॉब्लम, ही इज लिविंग इन द सेम अपार्टमेंट 7 years इन द पास्ट। ठीक है, देयर इज वन बेसिक मैजिकल हुक ऑफ एशले पोस्टन्स द 7 ईयर स्लिप। ठीक है, ये किताब का नाम है और मुझे इसका कॉन्सेप्ट इसीलिए इतना इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि रोमांस के बीच एक बड़ा क्वेश्चन है विच इज टाइमिंग। कभी पर्सन राइट होता है, टाइमिंग रॉन्ग होती है। कभी टाइमिंग परफेक्ट है बट पर्सन रॉन्ग है। कभी दोनों राइट होते हैं बट लाइफ हैज अदर प्लान्स एंड देन वी वंडर व्हाट इफ। सो आज का लाइफ यू नो में हम ये बहुत सारी चीजें कॉमनली देख पाते हैं। सो टुडे आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू कि अगर आपको अपने पास्ट के किसी एक पर्सन से दोबारा मिलने का चांस मिले बट यू कैन नॉट चेंज एनीथिंग, यू नो वुड यू गो? मतलब थिंक बिफोर आंसरिंग, राइट? क्योंकि समटाइम्स नॉस्टैल्जिया ब्यूटीफुल होता है बट रिविजिटिंग इट may not be. So this book is very beautiful, very interesting. Kitab ka naam hai The 7 Year Slip. You are listening Radio Olive. Main hoon Muskan aur ye hai Happy Weekends.

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।
1: Buying new glasses? Get a 200% payback offer at Alfala Optics. Find this and more offers on Savify. Visit savify.co today.

0: बहुत बार सुना होगा आई डू इट समडे। समडे नाम का एक डेंजरस वर्ड है। हम सबके पास एक वर्ड है जो बहुत डेंजरस है, समडे। समडे आई विल लर्न स्विमिंग, समडे आई विल ट्रैवल सोलो, समडे आई विल लर्न गिटार, समडे आई विल रीड दिस, और मे बी समडे आई विल स्टार्ट दैट बिजनेस, समडे आई विल टेक माई पेरेंट्स टू ट्रिप। और प्रॉब्लम पता है क्या है कि समडे कैलेंडर में आता ही नहीं है। मतलब संडे है, मंडे है, ट्यूजडे है, फ्राइडे भी है, बट समडे नो। दिसंबर 31st भी है बट समडे उसकी कोई डेट नहीं है। इसीलिए कभी कभी ना ड्रीम को मोटिवेशन नहीं डेट चाहिए होती है। समडे आई विल लर्न पोइट्री, नहीं, नवंबर 14th आप कह सकते हो कि पोइट्री क्लास है आपकी। बस ड्रीम सडनली रियल हो जाता है जब एक पर्टिकुलर डेट लग जाती है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ऑफ 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है हैप्पी वीकेंड। सो मैं बस आपको यही बता रही थी कि अगर आपकी समडे लिस्ट हम जानना चाहें तो आपकी लाइफ में वो कौन सी एक चीज़ है या क्या है जो आप बार बार बोलते हो कि एक दिन ज़रूर करूंगी या एक दिन ज़रूर करूंगा। मे बी टुडे इज़ द डे यू फाइनली पुट अ डेट ऑन इट। ठीक है, यू आर लिस्निंग रेडियो ऑलिव, मैं हूँ मुस्कान और नंबर है 3311063। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, रेडियो ऑलिव 106.3 FM।

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।
1: फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड ज्वेलरी? सीरियसली माही?
2: यस बेबो।
1: सिर्फ 25% पे करके गोल्ड प्राइस लॉक कर सकती हूँ?
2: यस।
1: कैच क्या है?
2: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के साथ सेलिब्रेशंस को और भी खास बनाओ। डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेसेस पर पाओ फ्री कैश वाउचर्स और सिर्फ 25% पे करके गोल्ड रेट को ब्लॉक कर दो।
1: आई स्टिल कांट बिलीव इट, नो कैच।
2: कैचेस सिर्फ मैचेस में होते हैं बेबो। दिस इज योर फेस्टिव गिफ्ट फ्रॉम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स।
3: टफ काम और भी आसान, कार्नल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्नल ग्रुप नाउ।

0: अच्छा, कभी आपके साथ हुआ है कि आप बहुत ही रैंडमली अपने नॉर्मल काम कर रहे हो, ठीक है, चाय बना रहे हो, ड्राइविंग कर रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो, और सडनली आपका ब्रेन कहीं और चला जाता है? रिमेंबर दैट वन रैंडम आफ्टरनून फ्रॉम 2009, मतलब एकदम से 10-20 साल पहले की कुछ याद आ जाती है एंड यू आर लाइक एक्सक्यूज मी, मुझे ये याद क्यों है? आपको याद नहीं है कल क्या खाया था, बट सडनली यू रिमेंबर दैट कलर ऑफ योर स्कूल बैग फ्रॉम क्लास सिक्स. ठीक है, देयर इज एक्चुअली फैसिनेटिंग थिंग हैपनिंग हेयर. मेमोरीज जो हैं वो स्टोर्ड होती हैं किसी फाइल की तरह, जैसे कंप्यूटर में फाइल होती है. दे कैन बी ट्रिगर्ड बाय अ साउंड, स्मेल, प्लेस, इमोशन, और इवन मतलब अनदर मेमोरी. आपने कुछ सेम सा देख लिया और आपको कुछ याद आ गया. समटाइम्स द ब्रेन मेक्स एन अनएक्सपेक्टेड कनेक्शन एंड सडनली फ्लैशबैक आ जाता है एंड आई रियली हेट इट. मतलब समटाइम्स तो ठीक है कुछ अच्छी चीज़ याद आ रही है, बट जो बुरी चीज़ें वो याद आती है ना तो बहुत ही बुरा लगता है. एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, वी डोंट ऑलवेज रिमेंबर द इंपॉर्टेंट मोमेंट्स. मतलब समटाइम्स ना वी रिमेंबर कंप्लीटली ऑर्डिनरी मोमेंट्स, पर्टिकुलर आफ्टरनून, कोई यू नो लाफिंग इन द नेक्स्ट रूम, बस की कोई राइड, कोई रैंडम कॉन्वर्सेशन, कोई सॉन्ग प्लेइंग समवेयर. मे बी क्योंकि ये जो टाइनी मोमेंट्स है वर अटैच्ड टू अ स्ट्रॉन्ग इमोशन. बट आप मुझे बताइए कि आपको अपनी लाइफ की कौन सी सबसे रैंडम मेमोरी बिना किसी रीजन के याद आ जाती है? वो मोमेंट इंपॉर्टेंट है भी कि नहीं, बट सम हाउ योर ब्रेन डिसाइड्स कि इसको डिलीट नहीं करना, इसको लाइफ टाइम रखना है. सो यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान आपके साथ. आप मुझे बताइए, जब आपको ऐसी कोई पुरानी चीज़ें याद आती है तो आपको अच्छा लगता है या फिर आपको लगता है यार क्यों याद करना? सो नंबर इज सेम 3311063 और ये है हैप्पी वीकेंड.
1: आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3 FM, जियो बिंदास.

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।
2: Buying new glasses? Get up to 100% payback offer at Alfala Optics. Find this and more offers on Savify. Visit Savify.co today.
3: Radio Olive par aane wala gaana cool song of the hour.
4: Kya baat hai sir? Kya baat? Ye baat hai.
5: Cool song.

0: सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: In association with
2: Nesto Hypermarket, now open at Old Passport Office, Karafa.
0: अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

सो बेसिकली जो ऑलरेडी बहुत अच्छा है उसको तो नोटिस किया, और स्लो होने के साथ साथ फ्राइडे सैटरडे इज लाइक कि ये भी करना है वो भी करना है. और शो के एंड में अब मेरे जाने का टाइम हो गया है, तो एक छोटी सी बात आपसे पूछती हूँ कि आप अपनी लाइफ को बेटर बनाने में इतने बिजी रहते हैं ना कि अच्छी जॉब चाहिए, अच्छा घर चाहिए, हॉलीडेज प्लान्स, बट कभी कभी एक ऑपोजिट क्वेश्चन भी पूछना चाहिए कि मेरी लाइफ में ऑलरेडी क्या बहुत अच्छा है जिसे मैं नोटिस ही नहीं करती हूँ. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और ये हैप्पी वीकेंड. भाई हैप्पी वीकेंड इज ओनली फॉर मोटिवेशन. मे बी समवन हु कॉल you every morning, maybe your mother's voice, maybe a peaceful ghar, maybe the job you once desperately wanted aur aaj aapke paas hai, maybe friends jo aapke saath haste hain, stupid se jokes banate hain. So Friday ki ek slow evening mein main aapse bas yahi kahungi ki hum aksar happiness ko future mein search karte hain, jab ye ho jayega wo ho jayega, but maybe life jo hai wo aapko abhi already yahan par bahut kuch de rahi hai, bas hum busy the, humne notice nahi kiya. So aaj message karke mujhe batao ki आपकी लाइफ की एक वो कौन सी चीज है जिसके लिए आज आप जेन्युइनली थैंकफुल हो. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल फॉर नाउ. आई हैव टू से बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, कल मिलेंगे सुबह लाइफ मस्त है लेकर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: 93FM.
1: ओए संदीप सिंह जी, हमारे हॉकी इंडिया के सितारे और शहबाद के प्यारे गांव में एंट्री ले चुके हैं। आइए पधारिए पधारिए पधारिए पधारिए पधारिए पधारिए पधारिए पधारिए पधारिए

0: तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ओलिव जियो बिंदास
1: आरजे सिमरन के साथ
2: इट्स टाइम टू पार्टी.

listening to Radio Olive 106.3 FM.

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Geo Bindas.
1: Chandni.